सुप्रभात श्रोताओं, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। विविध भारती पर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष

0: विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई हो। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 207। 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनेस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। सुबह 7 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। सुबह 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। फिल्मकार मणि रत्नम पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेहतनामा दांतों की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर जयेश गुगे से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 11 रंग तरंग कार्यक्रम और दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 1 से और दिन में 2 कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। दिन में 3 विशेष सखी सहेली कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से ममता सिंह की बातचीत। जी हाँ दिन में 3 सखी सहेली और ये कार्यक्रम लाइव होगा। याद रखिए दिन में 3 कार्यक्रम सखी सहेली अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से ममता सिंह की बातचीत। 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे बांसुरी वादक पारस नाथ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 7 जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 का समय है हवा महल कार्यक्रम का। सुनिए झलकी ससुराल का नौकर। लेखक हैं संतोष श्रीवास्तव और निर्देशक राकेश ढोंडियाल। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक। रात 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और रात 9:30 पर कार्यक्रम

कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत। रात 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और रात 11 बजे रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 207।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 207।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, पहली कड़ी में आपने हमें बताया कि किस तरह से तबले का जन्म हुआ
2: जी,
1: और पहले मृदंग अक्सर बजा करता था।
2: हाँ।
1: और शास्त्रीय संगीत में उसकी जरूरत ख्याल गायकी में जिस प्रकार से महसूस की गई
2: जी,
1: और इसलिए तबला हाँ। जो है बनाया गया और संगीत में उसका प्रचलन हुआ।
2: बिल्कुल।
1: आज पहले तो ये बताइए कि फिल्म संगीत में तबले का आगमन कैसे हुआ।
2: वैसे तो महाराष्ट्र में फिल्म संगीत के पहले
1: जी,
2: मतलब दादा साहेब फाल्के जी को फिल्म का जनक माना जाता
1: जी
2: है, तो उसके पहले महाराष्ट्र में
1: जी
2: नाट्य संगीत प्रचलित था। तो नाट्य संगीत जो है, वो नाट्य संगीत मूलतः वो नाटक के साथ में संगीत है
1: जी,
2: लेकिन संगीत के श्रोता के लिए वहां पर संगीत का ही ज्यादा माहौल है
1: जी,
2: और नाट्य संगीत बहुत ही ज्यादा प्रचलित था महाराष्ट्र में फिल्मों के पहले। तो नाट्य संगीत में जो था वो तबला था, और उसके बाद में फिर फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तो फिल्में जैसे 1931 में आलम आरा जो पहली फिल्म है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें बोलना
1: पहली बोलती फिल्म,
2: बोलती फिल्म जी, थी जी। पहली तो पहली बोलती फिल्म जो है, तो उसके आगे फिर गाने आना शुरू हुआ फिल्मों में
1: जी।
2: तो उसमें जो है वो शुरू में फिर तबला ही था, क्योंकि तबले का जो मतलब नाट्य संगीत का जो प्रभाव था वो शुरुआती हमारा जो फिल्म संगीत है उसमें वो दिखाई देता है
1: जी।
2: तो नाट्य संगीत में तबला था, फिल्मों में भी शुरू में तबला
1: ही
2: था। बाद में फिर एक एक वाद्य उसके साथ जुड़ते गए, लेकिन शुरुआत में तो तबला ही था।
1: हमारे संगीत में गायन की जितनी विधाएं हैं उसमें जो तबला संगति की जाती है और फिल्म संगीत में तबला संगति की जाती है, इसमें क्या अंतर है?
2: अभी देखो, गायन में जो तबला संगत है, तो हमारे पास गायन की कई सारी विधाएं है
1: जी।
2: उसमें प्रथमतः आता है शास्त्रीय संगीत, फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि कुछ नाट्य संगीत का भी जो शुरुआती प्रभाव था महाराष्ट्र में, तो इस तरह का जो है गायन विधा जो है, तो उसमें संगत के लिए हम तबला संगत करने वाले जो होते हैं, संगतकार जो होते हैं, वो संगतकार उनको एक मौका मिलता है उसमें

0: मौका गायक की तरफ से दिया जाता है कि एक आध मतलब वो छोटा ख्याल गा रहा है, तो छोटा ख्याल का वो जब ध्रुव पद पे आते हैं तो वो तबला वादक को एक बजाने के लिए
1: अवसर देते हैं। जी।
0: अब मान लो एक हम यमन राग की बंदिश अगर लेते हैं
1: जी,

0: तो ये अवसर वहाँ पर मिलता है जो तबला वादक अपना स्वतंत्र तबला वादन की जो शैली है
1: जी
0: उसको थोड़ा सा पेश उसमें कर सकता है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जैसे सितार की संगत है या सरोद की संगत है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में तबला संगत जब होती है तब उसमें और भी ज़्यादा अवसर मिलता है और उसमें तबला संगतकार अपनी जो शैली है
1: जी
0: वो दिखाता है। अब फिल्मी संगीत जो है उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें क्या है कि ठेका जो गाना चल रहा है उसका ठेका बजाना, ऐसा कहा जाता है कि ये ठेका जो है ये ठेके ने ही जान छिड़की है फिल्मी अच्छा। गीतों में जो ठेका बजता है वो ठेका उसी के वजह से उसमें जान आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि केवल ठेका और उसके पैटर्न मतलब उसी को रिलेटेड जिसको हम लोग ताल का विस्तार कहते हैं तो ताल विस्तार की तरह से वो पैटर्न आते हैं लेकिन मूलतः उसमें ठेका होता है। स्वतंत्र वादन शैली जो है
1: जी।
0: उसको उसमें नहीं लिया जाता। तो इस तरह से फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत की संगत में फर्क है।
1: अभी उदाहरण के तौर पे आप क्या बताना चाहें?
0: जैसे हम लोग अभी मान लो एक दादरा ताल में लेता हूँ। दादरा में धा दीना धा तीना धा दीना। अभी ये दादरा इस तरह से फिल्मी गीतों में नहीं बजेगा।
1: हाँ
0: उसका जो रूप होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। वो किस तरह बदलता है

0: तो ये जो है उसमें पैटर्न बोले तो वो जो ठेका है उसी का विस्तार या उसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते करते जो गीत के अनुसार होता है
1: जी,
0: मतलब जो गीत में सौंदर्य प्रदान करने वाला जो ठेका है
1: जी,
0: वो उस तरह से उसका उपयोग फिल्मी गीतों में किया जाता है।
1: तो ठेके का जो ये बदला हुआ स्वरूप है,
0: हाँ हाँ,
1: जिसे रिदम पैटर्न कहा जाता
0: जी,
1: है
0: जी जी,
1: तो ये हम किसी गीत को उदाहरण के रूप में सुन सकते हैं?
0: हाँ सुन सकते हैं ना। अभी हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से KL सहगल साहब का ही गाना मैं क्या जानू क्या जादू है,
1: जिंदगी फिल्म का गीत।
0: हाँ
1: जी,
0: तो इसमें जो है ना वो तीन ताल है।
1: हाँ,
0: और तीन ताल जो है वो कैसे, मतलब पुराने जमाने में वो ढाला तबला होता था, मतलब सुर का तबला।
1: हाँ,
0: जैसे हमारे ऑक्टेव होते हैं ना, तीन ऑक्टेव।
1: जी हाँ,
0: तो उसमें जो नीचे का है खरज वाला
1: जी,
0: तो उसमें सुर का तबला बजता है, और फिर टीप का तबला मतलब ऊपर वाले ऑक्टेव में तार स्वरों में
1: जी।
0: तो पहले वो सुरों के तबले का प्रचलन था, और सुर का तबला जो है वो संगत के लिए लेते थे
1: जी।
0: तो तीन ताल है, लेकिन तीन ताल में भी बड़ी नज़ाकत है। उसमें भी मैंने जो कहा कि ठेका जान छिड़कने वाला होता है, तो वो गाने में कैसे प्राण भरता है
1: जी,
0: वो इसके लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
1: क्या बात है, आइए सुनते हैं
0: जी
1: जिंदगी फिल्म के इस गीत को।

0: श्रोताओं, केएल सहगल की आवाज में जिंदगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जो तीन ताल में निबद्ध है। संगीतकार पंकज मल्लिक। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी अब संपन्न हो रही है। तीसरी कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आगे दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी।

हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है वो दिल की रानी, इस फिल्म का गाना राज कपूर की आवाज में, यशोधन जोशी का लिखा हुआ गाना, एसडी बर्मन का संगीत। आज निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

दिल की रानी इस फिल्म का ये गाना राज कपूर की आवाज़ में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं आवारा फिल्म का गाना लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। आग इस फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में बेजात लखनवी के बोल संगीत है राम गांगुली का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री 420 इस फिल्म का गाना, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा शैलेंद्र ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।
1: जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम आह।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। परवरिश फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है दत्ताराम का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। दिल ही तो है इस फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। सहेल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना है मेरा नाम जोकर। इस फिल्म से आशा भोंसले और मुकेश की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में। अब आपके लिए लेकर आए हैं कल, आज और कल, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा शैली शैलेंद्र ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।
1: क्या?
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

अंतराल की बात लीजिए, अब सुनिए संगम फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। छलिया इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हम हे राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अनाड़ी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the importance.
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार

0: निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस
1: ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्षम

0: सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांह की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

तो दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी कि मंजू द्विवेदी के साथ। सबसे पहले राउडी राठौड़, इस फिल्म का गाना वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, संगीत है साजिद वाजिद का।

0: पे चल गया।
1: आज अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और विविध भारती की ओर से कहते हैं हैप्पी बर्थडे। आर राजकुमार फिल्म का गाना नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में, मयूर पुरी के बोल संगीत प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना दबंग फिल्म का गाना राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में फैज़ अनवर के बोल संगीत है साजिद वाजिद का। वाकई में सोनाक्षी सिन्हा मस्त मस्त दो नैन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दबंग 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजों में, इरफान कमाल के बोल हैं, संगीत है साजिद वाजिद का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, विविध भारती का एक बहुत ही जाना माना कार्यक्रम है जिन्हें लोग पसंद करते हैं, सखी सहेली कार्यक्रम, जिसकी आज वर्षगांठ है और विशेष कार्यक्रम आप 3 बजे सुनेंगे, ये तो हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ आज सुप्रसिद्ध फिल्मकार मणि रत्नम का भी जन्मदिन है, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तमिल व हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया है। हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो रोजा, बॉम्बे, दिल से, साथिया, युवा, गुरु, इन को हम याद कर सकते हैं। निर्देशन के अलावा उन्होंने लेखन का भी कार्य किया है, संगीत की भी गहरी समझ है। उन्होंने अपनी फिल्मों के किरदारों में संस्कृति और भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से उतारा है, तो उन्हें जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं। और रोजा फिल्म के गाने की एक झलक इस वक्त हम आपको सुनवा देते हैं।

रोजा फिल्म के गाने की ये झलक हमने आपको सुनवाई, मणिरत्नम की फिल्म रोजा। और ये गीत की जो झलक सुनवाई तो शायद सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने घूम गए होंगे। चलिए अब हम चित्रलोक कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। लुटेरा फिल्म का गाना, मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्र वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर, इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर। इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा ने।

1993 में निर्मित थिरुडा थिरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय

0: से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुगे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए, उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है, क्योंकि आने वाले दांत जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
3: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है,
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
3: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है
0: जी।
3: ठीक है,

0: इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में
0: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशन होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
1: जी।
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों की
0: एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं, फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 इयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन

0: आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर
1: अरे
0: दोनों
1: बाप रे,
0: हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ,
1: ठीक है।
0: चलेगा।
1: हाँ
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके।
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं,
1: तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना
0: क्रेविंग
1: है।
0: नहीं होता है वो
1: यस
0: बाहर इजीली, जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए, आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है, असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है,
0: होता है। हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएट।

0: विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरस।
1: हाँ, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं। एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो,
1: और ये होता है

0: सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
1: बिल्कुल,
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
1: ये बहुत ज्यादा है,
0: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है, लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस।
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा रहा हूं,
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े की हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं, बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर में 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है, तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास

0: इतने जल्दी हो सके
1: exactly.
0: डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
1: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
0: तो हमारे लिए भी गाइए।
1: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
0: जी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता।

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है, उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
0: हाँ,
1: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है। तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
1: हाँ जी,
0: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
1: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
0: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
1: दांतों की बीमारी नहीं है। ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
0: यस,
1: तब दांत हिलेगा।
0: तो हड्डी मामला है।
1: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना

0: चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं, वो आगे चल के मुंह से बदबू आना।
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो।
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता, और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी,
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू, स्मोकिंग,
0: और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे
0: क्योंकि आपने करना सीखे।
1: एग्जैक्टली, क्या बात है, सुनते।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी

0: की है, वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 to 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का,
1: बहुत कम है।
0: बहुत कम है, वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक,
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है,
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: एग्जैक्टली।
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: विविध भारती
2: रंग तरंग।
0: रंग तरंग के आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत, उन्हीं के एल्बम से, अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में।

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो

कि यूं होता तो क्या होता, जगजीत सिंह को आप सुन रहे थे इस गजल में। इसके साथ ही आज का रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन

0: के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

0: फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद पक्षी ने इसे लिखा।
1: वो जब याद आ...

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है, और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के

लिखे लिस्ट में वो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में यूं खिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी,

एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है। एक नर्म सा खत हवा के संग आया था जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था। पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी। पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी। यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिल गए। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं, गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास

0: नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में, नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है, चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफर में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी खुशियां आती है तो जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहां यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताजा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, जमाने में गुलमोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सब की आवाज़ें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई, और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं, और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे यह कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल है।

हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहाँ पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि, गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम जरूर है, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में हैं। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की, फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है, जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतजार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, जरूर मुझे लिखिए।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है, सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में, शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफ़ी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए जब तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर

उसको बाकी कामों में यूज कर सकें। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का टूर किया था, और वहाँ पर फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की, और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं, और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है, और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है, और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

फिल्म अपने पराये से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप ज़रूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांह की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सफल

0: योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे

0: ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले दो से तीन दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र ने इसे लिखा था। शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: मुझसे न पूछो कि तुम।
1: और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा। और हमारी जानी मानी अदाकारा, जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोता, और 4 मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से।
2: देखिए

0: वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे
1: जी
0: बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी हम लोग पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था, तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकीनंदन पांडे जी की आवाज़ अभी तक कानों
1: जी
0: में
1: जी
0: गूंजती है,
1: समाचार वाचक
0: कुंदन लाल से

0: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सबके सब,
1: बिल्कुल.
0: तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूं,
1: जी
0: लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं
1: जी
0: रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या आजकल, जब
1: जहाँ
0: खासकर
1: बहुत
0: जब
1: सारे
0: हम,
1: चैनल्स हैं.
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके,
1: जी
0: गाने
1: बिल्कुल.
0: बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही
1: क्या
0: बचाता
1: बात
0: है।
1: है, बहुत बढ़िया बात आपने कही. और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा
0: रेडियो
1: जाता
0: रखा
1: था, और
0: जाता
1: गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री
0: क्रिकेट
1: सुनने
0: कमेंट्री
1: चलते
0: सुनते
1: हैं.
0: हैं।
1: तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है. अब बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, बताइए
0: नहीं,
1: हमें.
0: क्रिकेट में मैं तो ज़्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. हाथ जोड़ के प्रार्थना
0: हाँ,
1: किया
0: और
1: करते
0: जैसी
1: थे.
0: कोई भी भारत पाकिस्तान का या
1: हाँ,
0: भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी
1: जीत
0: मैच हो तो
1: जाए.
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल. एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर।
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे. तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते
0: जी
1: हैं.
0: जी
2: तक लो.

0: है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
1: सही बात है।
0: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे नहीं
1: बड़ा
0: लगता
1: गहरा है
0: बहुत गहरा लगता है।
1: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा। और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए। क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुक्कड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
0: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि,
1: जी
0: और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और
1: ओह
0: पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में,
1: जी
0: लक्ष्मण सिद्ध होता था और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे, पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
1: जुड़ाव बहुत
0: बहुत
1: रहा।
0: जुड़ाव था, और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
1: नौशिया
0: तो
1: होता
0: हम
1: है।
0: लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर मसूरी
1: है।
0: पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी, और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
1: जी
0: वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है,
1: मशहूर।
0: पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे, और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग डगन हिल पैदल चलते थे, और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे, हम अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
1: लग नहीं
0: हैं
1: रही कि आप शैतान थी, बहुत सीधी सादी लग रही है
0: बहुत शैतान थे,
1: देखने
0: मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में,
1: में
0: दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
1: जी
0: का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर, मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल में
0: फोन पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे,
1: हैं।
0: अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना ना

0: पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: बंदरों की तरह पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों ने
1: खाना।
0: आप लोग को मतलब या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची आम जामुन अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए।
2: हाँ।
1: अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
1: साधन है,
0: साधन भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी। तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था,
0: तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म, तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: हूं, अलग ही दुनिया थी,
0: हाँ, नहीं सोच ही नहीं सकते थे
1: जी।
0: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं ब्रेक्ट का, 3 Penny Opera। इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो खैर काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
1: पुणे में है,
0: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दे,
1: किसी को बताया नहीं आपने,
0: किसी को नहीं बताया घर में, और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
1: NSD करूँगी,
0: NSD में, तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेज करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो सब कहती कि भट्टी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का, भट्टी की नौनी तो बहुत होशियार है, अब जैसे लोगों को पता चला भट्टी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही भट्टी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ, मेरे पापा के पास आए कि भट्टी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है, और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी, तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे, भांड करेगी,
1: जाता था, बिल्कुल।
0: बहुत बुरा, तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त शैलेश, वो वहाँ के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना है, शौक है ना तुम्हारा,

0: तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे NSD लेकर गए,
1: क्या बात है।
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊँ
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ,
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: थी।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी कि कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था ए ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी
1: बहुत
0: रकम थी,
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: गाना

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारी विशेष सखी, विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें NSD की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब NSD में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन
1: है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां

0: सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा
1: जी
0: कमाने के लिए। और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में। तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है ही नहीं खेती करने के लिए, और वो है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क
1: बहुत ही ये
0: है।
1: बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफ़ी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं, सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गाँव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि

0: वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले।
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज़्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं,
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम तो
0: बिल्कुल,
1: हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू।
1: कहाँ
0: नहीं,
1: से
0: मैं भी पहाड़ियों,
1: आई।
0: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं।
1: जी।
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है, सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे, अभी इस
0: जरूर,
1: प्रोग्राम के बाद 4 बजे, जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी पुरी रखेंगे, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये
1: ये
0: मेरे
1: हम
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना, ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, ज़रूर हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर, कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ,
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे हैं।
0: हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो NHD रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते हैं। अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं,
0: देखो इमेजिन
1: की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NHD से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर

0: कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ
0: दिल
1: कुछ
0: वाले
1: होता
0: की,
1: है और
0: दिल
1: दिल वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हनिया
0: कुछ
1: ले
0: होता है
1: जाएंगे।
0: कि रिफत भी, और दिल वाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार। और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी
0: काम किया,
1: खास
0: और ये मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला वो सुलक्षणा, उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो थे। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि
0: मम्मो
1: कला मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये
0: कोई राज की बात नहीं।
1: तो।
0: ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है,
1: जी
0: शेक्सपियर ने भी
1: जी
0: कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया।
0: है
1: जी
0: जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज़्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, वो सब ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं, जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोणे 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आर्ज होते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्ज होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: प्रतिभा है,
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनकी जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी,

0: मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों,
1: क्या
0: हमारी मेहनत कहाँ गई? हमने क्या पढ़ाई नहीं करी?
1: बात
0: या
1: कही
0: हम जो
1: आपने।
0: रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ
1: दूरी
0: बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है। तो एक ये सब
1: दूरी तेरी
0: संघर्ष करने
1: जिम्मेदारी भी
0: पड़ता।
1: निभानी पड़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है,
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
0: और उसमें
1: लंबी
0: शक्ति
1: यात्रा।
0: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है। वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी, अब गाना सुनवाए एक।
0: जरूर
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम जी, कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: जरूर हम जरूर
0: तो
1: आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए, विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहां बहुत बड़े बड़े जैसे

0: शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक

0: रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब.
1: बिल्कुल.
0: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
1: अच्छा
0: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए. वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे.
1: वाह वाह.
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी,
1: जी
0: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
1: जी.
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं. तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली में. पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था. आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है.
1: वाह.
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का.
1: अच्छा.
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के. मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी,
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए.
1: जी जी.
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है. तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया. तो ये इस तरीके का रहा सफर.
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा.
0: दिल्ली
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं.
0: जरूर.
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना.
1: अच्छा. देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे. ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं.
0: जी जी जी,
1: है ना
0: जी. जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है.
1: क्या
0: पिताजी के साथ.
1: वाह.
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ.
1: वाह.
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान.
1: जी जी जी.
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं.
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के.
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी.
1: वाह.
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है.
1: अच्छा.
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए. तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु. तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं.
1: बिल्कुल.
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से. तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे.
1: क्या बात है.
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु.
0: और वेणु क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं.
1: जी जी.
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का. वो था धरोवर का. तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हूँ
1: जी।

0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह,
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की, और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें, और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सके। अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह,
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है,
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं।
1: जी जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव

0: लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था। तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा, हाँ। तो इस तरह से
0: मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी जी।
0: हाँ, वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी जी,
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकता
1: जी।
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी,
1: जी
0: जी
1: जी। और
0: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी ऊंचाई
1: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: बाबा
0: अन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फेरिस्ट है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चरें
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माय पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहां पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहां बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं
1: जी।
0: और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है।

0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो
0: हीरो का
1: एक
0: एक बहुत ही शानदार पीस है
1: वो पीस है।
0: जी।
1: और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वह फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे
1: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर,
0: जी, बिल्कुल।
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह।
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
0: जी,
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू फ्लूट
0: डिफरेंट
1: एकदम
0: है
1: अलग है।
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी
1: मुझे
0: बजाना होता है
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ।
0: जी
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं।
0: जी
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी,

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूं और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूं वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा,
1: जरूर बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात
1: उसका
0: है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी निकल
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब
0: गया
1: सर
0: है।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूं मतलब अकेले

0: अमेरिका घूमा हूं, लंदन घूमा हूं, यूरोप घूमा हूं, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट करेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूं। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
1: जी,
0: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
1: क्या बात है।
0: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
1: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
0: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
1: कहां से लाए?
0: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
1: अच्छा अच्छा।
0: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे, तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
1: जी जी।
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
1: बिल्कुल
0: इसका साउंड में सुना था आपको
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी, म्यूजिक
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है।
1: जी,

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा।

0: पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
1: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
0: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ
1: जी।
0: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
1: जी जी।
0: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।

0: ये भी सारे गांव है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। इस महफिल को यहाँ रोकते हुए,
0: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
1: मैं समझ सकता हूँ।
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं
0: जाने, नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और
0: मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: क्या आपको, मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन, वंस अगेन, दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते, रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूं
0: जी।
1: जैसे सपोज

0: हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है
1: बिल्कुल,
0: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको।
1: जी
0: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
1: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
0: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
1: जी।
0: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
1: अरे बाप।
0: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
1: जरूर
0: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में, क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते हैं।
0: जी।
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके,
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है, मोमो के धागे वाले का
0: गाने में, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे गर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माशू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने, तर्ज बनाई है श्याम सुरेंद्र ने, बोल लिखे हैं गौहर कानपुरी ने।

ये थे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति फिल्म बाशूप में। अब सुनते हैं मुकेश और कंचन के स्वर में धर्मात्मा फिल्म का गीत। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके।

अगला गीत राम संपत का संगीतबद्ध किया, रचनाकार हैं समीर। खाकी फिल्म के इस गीत की धुन को आवाज दी है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह करिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: लल्ला तुम हो ओ दिलरुबा।
1: अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत, आवाजें सोनू निगम और जावेद अली की फिल्म का नाम जब वी मेट।

सीता और गीता। अब सुनिए इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार को आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर टी बर्मन ने।

सीता और गीता, अभी आपने इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार को सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। अभी 6 बजने को है, कुछ पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान

0: के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और RD बर्मन का संगीत बद्ध किया कुदरत फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

अब सुनिए लुटेरा फिल्म का गीत मोनाली ठाकुर की आवाज में। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत तैयार किया है अमित त्रिवेदी ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अमर अकबर एंथनी। लीजिए अब इस फिल्म का गाना सुनिए, आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ट्रैफिक सिग्नल, ये है नाम फिल्म का और ये है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश भी। आवाज उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल्य का और बोल लिखे हैं खिलेश शर्मा ने।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 7 फौजी भाई सुनेंगे कार्यक्रम जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम सुनिएगा। 8 हवा महल में संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी ससुराल का नौकर। निर्देशन है राकेश धोंडियाल का। आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 9:00। आज के पंडकार

ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर पर। 10 बजे छायागीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर और 11 बजे प्रसारित करेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। जागो सुबह हो गई, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 5 बजे। संगीत सहिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर। कलाकार होंगे तबला वादक रविंद्र खासनीस। कल सुनिएगा इसकी तीसरी कड़ी, समय सुबह और शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप नियमित सुनते हैं सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का प्रसारण समय होता है सुबह 8:15 पर और दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने आप सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार, कल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। समय होगा 9:30। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आएंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। दिन में 3 बजे बहने सुनेगी सखी सहेली कार्यक्रम। कल के विषय है रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का आधार, साड़ियों का संसार घर चोला साड़ी, विश्व साइकिल दिवस। व्यंजन में जानिएगा बेसन की सब्जियों के बारे में। शाम 4 बजे पिटारा में आज की मेहमान होंगी डॉक्टर गायत्री आहूजा, आपसे बातचीत करेंगी ममता सिंह।

शाम 5 बजे छाया गीत लेकर आएंगे। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में नंदलाल पाठक की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी चिट्ठी, निर्देशन सीबी मंडाले का। रात 9:30 पर आज के पनकार केंद्रित होगा अभिनेता आर माधवन पर। 10 बजे छायागी, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुहाग फिल्म के गीत से। इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, साथियों ने भी, और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविन्द्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविन्द्र जी, पहली कड़ी में आपने हमें बताया कि किस तरह से तबले का जन्म हुआ
2: जी।
1: और पहले मृदंग अक्सर बजा करता था
2: हाँ।
1: और शास्त्रीय संगीत में उसकी जरूरत ख्याल गायकी में जिस प्रकार से महसूस की गई
2: जी।
1: और इसलिए तबला
2: हाँ।
1: जो है बनाया गया और संगीत में उसका प्रचलन हुआ।
2: बिल्कुल।
1: आज पहले तो ये बताइए कि फिल्म संगीत में तबले का आगमन कैसे हुआ।
2: वैसे तो महाराष्ट्र में फिल्म संगीत के पहले
1: जी,
2: मतलब दादा साहेब फाल्के जी को फिल्म का जनक माना जाता
1: जी
2: है, तो उसके पहले महाराष्ट्र में
1: जी
2: नाट्य संगीत प्रचलित था। तो नाट्य संगीत जो है, वो नाट्य संगीत मूलतः वो नाटक के साथ में संगीत है
1: जी।
2: लेकिन संगीत के श्रोता के लिए वहां पर संगीत का ही ज्यादा माहौल है और नाट्य संगीत बहुत ही ज्यादा प्रचलित था महाराष्ट्र में फिल्मों के पहले। तो नाट्य संगीत में जो था वो तबला था और उसके बाद में फिर फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तो फिल्में जैसे 1931 में आलम आरा जो पहली फिल्म है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें बोलना
1: पहली बोलती फिल्म
2: जी, थी जी। पहली तो पहली बोलती फिल्म जो है, तो उसके आगे फिर गाने आना शुरू हुआ फिल्मों में
1: जी।
2: तो उसमें जो है वो शुरू में फिर तबला ही था, क्योंकि तबले का जो मतलब नाट्य संगीत का जो प्रभाव था वो शुरुआती हमारा जो फिल्म संगीत है उसमें वो दिखाई देता है
1: जी।
2: तो नाट्य संगीत में तबला था, फिल्मों में भी शुरू में तबला ही
1: तबला
2: था। बाद में फिर एक एक वाद्य उसके साथ जुड़ते गए, लेकिन शुरुआत में तो तबला ही था।
1: हमारे संगीत में गायन की जितनी विधाएं हैं उसमें जो तबला संगति की जाती है और फिल्म संगीत में तबला संगति की जाती है, इसमें क्या अंतर है?
2: अभी देखो, गायन में जो तबला संगत है, तो हमारे पास गायन की कई सारी विधाएं हैं
1: जी।
2: उसमें प्रथमतः आता है शास्त्रीय संगीत, फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि कुछ नाट्य संगीत का भी जो शुरुआती प्रभाव था महाराष्ट्र में, तो इस तरह का जो है गायन विधा जो है, तो उसमें संगत के लिए हम तबला संगत करने वाले जो होते हैं, संगतकार जो होते हैं, वो संगतकार उनको एक मौका मिलता है, उसमें मौका गायक की तरफ से दिया जाता है
1: हाँ।
2: कि एक हाथ मतलब वो छोटा ख्याल गा रहा है
1: हाँ।
2: तो छोटा ख्याल का वो जब ध्रुवपद पे आते हैं तो वो तबला वादक को एक बजाने के लिए
1: अवसर देते
2: हैं
1: जी।
2: अब मान लो एक हम यमन राग की बंदिश अगर लेते हैं
1: जी,

0: ये अवसर वहां पर मिलता है जो तबला वादक अपना स्वतंत्र तबला वादन की जो शैली है
1: जी
0: उसको थोड़ा सा पेश उसमें कर सकता है। जहां पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जैसे सितार की संगत है या सरोद की संगत है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में तबला संगत जब होती है तब उसमें और भी ज्यादा अवसर मिलता है और उसमें तबला संगतकार अपनी जो शैली है
1: जी
0: वो दिखाता है। अब फिल्मी संगीत जो है उसमें

0: ये चीज नहीं है। उसमें क्या है कि ठेका जो गाना चल रहा है उसका ठेका बजाना, ऐसा कहा जाता है कि ये ठेका जो है ये ठेके ने ही जान छिड़की है फिल्मी गीतों में।
1: हाँ।
0: जो ठेका बजता है वो ठेका उसी के वजह से उसमें जान आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि केवल ठेका और उसके पैटर्न, मतलब उसी को रिलेटेड, जिसको हम लोग ताल का विस्तार कहते हैं, तो ताल विस्तार की तरह से वो पैटर्न आते हैं, लेकिन मूलतः उसमें ठेका होता है। स्वतंत्र वादन शैली जो है
1: जी,
0: उसको उसमें नहीं लिया जाता। तो इस तरह से फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत की संगत में फर्क है।
1: अभी उदाहरण के तौर पे आप क्या बताना चाहें?
0: जैसे हम लोग अभी मान लो एक दादरा ताल में लेता हूँ।
1: हाँ, हाँ।
0: दादरा में धा धी ना धा ती ना धा धी। अभी ये दादरा इस तरह से फिल्मी गीतों में नहीं बजेगा।
1: हाँ,
0: उसका जो रूप होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। वो किस तरह बदलता है?

0: वाह।
1: तो ये जो है वो सुबह पैटर्न बोले तो वो जो ठेका है उसी का विस्तार या उसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते करते जो गीत के अनुसार होता है
0: जी,
1: मतलब जो गीत में सौंदर्य प्रदान करने वाला जो ठेका है
0: जी,
1: वो उस तरह से उसका उपयोग फिल्मी गीतों में किया जाता है।
0: तो ठेके का जो ये बदला हुआ स्वरूप है,
1: हाँ हाँ,
0: जिसे रिदम पैटर्न कहा जाता है,
1: जी जी,
0: तो ये हम किसी गीत को उदाहरण के रूप में सुन सकते हैं।
1: हाँ सुन सकते हैं ना। अभी हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से केएल सहगल साहब का ही गाना मैं क्या जानू क्या जादू है,
0: जिंदगी फिल्म का गीत।
1: हाँ
0: जी।
1: तो इसमें जो है ना वो तीन ताल है।
0: हाँ।
1: और तीन ताल जो है वो कैसे, मतलब पुराने जमाने में वो ढाला तबला होता था, मतलब सुर का तबला।
0: हाँ।
1: जैसे हमारे ऑक्टेव होते हैं ना, तीन ऑक्टेव।
0: जी हाँ।
1: तो उसमें जो नीचे का है खरज वाला
0: जी,
1: तो उसमें सुर का तबला बजता है, और फिर टीप का तबला मतलब ऊपर वाले ऑक्टेव में तार स्वरों में।
0: जी।
1: तो पहले वो सुरों के तबले का प्रचलन था, और सुर का तबला जो है वो संगत के लिए लेते थे
0: जी।
1: तो तीन ताल है, लेकिन तीन ताल में भी बड़ी नजाकत है। उसमें भी मैंने जो कहा कि ठेका जान छिड़कने वाला होता है, तो वो गाने में कैसे प्राण भरता है
0: जी,
1: वो इसके लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं
1: जी
0: जिंदगी फिल्म के इस गीत को।

0: श्रोताओं, केएल सहगल की आवाज में जिंदगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जो तीन ताल में निबद्ध है, संगीतकार पंकज मल्लिक। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी अब संपन्न हो रही है। तीसरी कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आगे दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आपने लक्ष्य फिल्म में शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और रूप कुमार राठौर को सुना। संगीत शंकर एहसान लॉय का था, बोल जावेद अख्तर के। लीजिए प्रस्तुत है सेना पर आधारित गीत, आवाज गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, आवाज गीत संगीत कैलाश खेर का था। लीजिए सुनिए लकी अली और रम्या को फिल्म कहो ना प्यार है में। इब्राहिम इश्क के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में जूली फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

झुकता नहीं। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। SH बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए हरिहरन और सुरेश वाडकर को फिल्म माचिस में। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल ने।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम जयमाला। लीजिए सुनिए गुलाम फिल्म में अलका याग्निक और कुमार सानू को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ऋचा शर्मा के गाय गीत से, संगीत विशाल शेखर का, बोल विशाल ददलानी के।

अभी आपने गुरदास मान और पूनम भाटिया को फिल्म जीतेंगे हमने सुना। संगीत तैयार किया था विजू शाह ने, बोल राजेश भाटिया के थे। इसी के साथ ही पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की।

प्रस्तुत है हवा महल। इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी ससुराल का नौकर। निर्देशक हैं राकेश ढोंडियाल।

अरे सुबह के 9 बज गए पर रामू का कहीं पता नहीं। रामू, ओ रामू, देखूं इस कमरे में भी देख लूं।

0: ये ससुराल से आया नौकर मालिक से कम नहीं है। रामू, ए रामू, रामू, रामू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो लौट मांगी।
1: कौन है मैं? ओ साहब है।
2: अरे का साहब, हम इतना अच्छा सपना देखत रहे कि कछु पूछो नहीं।
0: अच्छा सपना देख रहा था, वहाँ घर के काम कौन करेगा, तेरा बाप?
2: अरे अरे साहब, देखो हमारे बाप तक मत पहुँचियो। अरे हमारा सपना पूरा होवे में तनक सी कसर हती कि आपने उठा दो। अरे ऐसो कौन सो पहाड़ टूट पड़ो जो आपने हमको डिस्टर्ब कर दो।
3: हमारी चाय कितने हैं?
0: अरे अरे चाय के बच्चे 9 बज गए हैं, 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और तू अभी चाय की रट लगा रहा है। अरे तू यहाँ चाय पीने के लिए नहीं, काम करने के लिए ससुराल से आया है।
2: अरे तनक तनक गम खाओ साहब, जे गुस्सा वुस्सा कोनो और पे दिखाइयो।
0: अरे हमारा भी एक रूटीन है, अपन उसी पे चलते हैं।
2: और देखो साहब, जैसे दीदी को इतने इम्पोर्टेंस मिलते है, वैसे अपन को भी इम्पोर्टेंस चाहिए। और हमको गुस्सा मत दिलवाइयो, नहीं तो जेरो आपको घर और हम चले अपने घर।
0: हे भगवान, ये कहां से मुसीबत आ गई। वो क्या कहते हैं, बुलाया था काम करने के लिए और ये तो मर्दुआ।
2: कौन आ गई, कौन आ गई साहब, और कितने हैं?
4: अच्छा तो आप सामने वाले फ्लैट में उन मैम साहब को घूरत रहे।
2: अब तो दीदी को सारी बातें बताना पड़ेंगी। दीदी, दीदी,
0: अरे चुप कर।
5: बाप रे, क्यों हमारी एयर कंडीशन्ड जिंदगी में हीटर जला रहा है मेरे बाप?
0: अच्छा अब जल्दी से मेरे लिए मूली के पराठे और टमाटर की सब्जी बना दे।
2: अरे पहले हमको चाय, फिर एक गिलास दूध और उके बाद आधा किलो गाजर का हलवा का प्रबंध करो।
0: तू ये मत भूल कि तू यहाँ काम करने आया है, करवाने नहीं। और हाँ, मेरे कहे अनुसार अगर तूने काम नहीं किया ना, तो बांध अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से।
4: दीदी,
0: अरे चुप चुप रे, मेरे घर में आग लगाएगा क्या?
6: अरे क्या हुआ?
4: अरे दीदी, हमारी बेइज्जती करवानी हती तो हमें इतने काय बुलाओ?
6: अरे रामू, तू तो पसीने से तर बतर हो रहा है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? रामू तू बिल्कुल मत घबरा, बता क्या बात है?
0: अरे रामा, तुम कहाँ इस बहुरूपिये के चक्कर में पड़ गई?
4: देखो दीदी,
0: ये तो मेरे घर में मेरे ऊपर ही क्या कहते हैं वो पेट्रोल डालकर लाइटर लगा रहा है।
6: आप चुप रहिए जी, आप रामू पर बेकार ही दोष लगा रहे हो। ये तो बहुत वफादार है, इसीलिए तो पापा ने इसे मेरे साथ भेजा है। इसने जरूर आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा देखा सुना होगा। रामू तू बता मुझे क्या बात है?
0: नहीं नहीं रामा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। रामू तो भोला सा, सीधा सा, प्यारा सा बच्चा है। हाँ बेटा रामू, पहले तेरे को चाय चाहिए?
4: हाँ साहब।
0: ओह, फिर दूध का गिलास चाहिए?
4: हाँ साहब।
0: और इसके बाद आधा किलो गाजर का हलवा?
4: वाह साहब वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत ही गजब की है
0: ना?
4: सच्ची साहब, अगर हम लोगों को आप जैसे मालिक मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी तर जाए।
0: रमा सुन लिया ना तुमने? तो अब जल्दी से रामू के लिए सब चीजें तैयार करके ले आओ।
6: मैं?
2: साहब ये चीजें तो हमने दीदी के हाथ की आपकी ससुराल में बहुत खाई हैं। सो हमाओ कैवो को मतलब ये हतो कि अगर ये सारी चीजें आप बना ला तो हम दोनों चीजों का कॉम्पिटिशन करके ये बता देत कि कौन अच्छो बनाते है।
0: वाह, वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए पर तुम जैसे नमूनों को छोड़ गए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए।
2: वो अंग्रेज हो या चंगेज हो, हमें का फर्क पड़त, अपन को तो गुटली से मतलब है, आम से काले वो देवो।
6: वाह रामू वाह, तेरा भी क्या दिमाग चलता है, वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल सुपर फॉस्फेट की तरह। और हाँ सुन लीजिए आप भी, मैं भी ये सारी चीजें खाऊंगी।
0: हाँ हाँ ठीक है, लेकिन महारानी जी उसे सुपर फॉस्फेट नहीं सुपर फास्ट कहते हैं।
6: हाँ हाँ वही वही।
2: देखो देखो दीदी, साफ बात बदलवे के लाने ऐसी बातें कर रहे हैं।
6: हाँ जी, अब आप भी ये सब फालतू बातें छोड़िए और जल्दी से चलिए चलिए ये सब चीजें।

0: बना के लाइए।
1: हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं, ससुराल से नौकर क्यों लाया। जब मुसल में सर दिया है तो ओखली से क्या डरना।
2: जे का कह रहे साहब, बाप को ऐसे बोलते हैं, जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना।
1: अच्छा मालक, अब आप मालक लोग जाइए, तब तक हम आप लोगन के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं।

0: अलग लोग जाइए, तब तक हम आप लोगन के लिए चाय नाश्ता बना दें। अरे ये क्या मुसीबत है, एक घंटे से मैं टाई और सूट ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। कहाँ चले गए मेरे टाई और सूट? जब से ये रामू का बच्चा आया है रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता है। रमा, ओ रमा, अरे रामू, रामू के बच्चे
1: आते हैं, आते साहब आते हैं।
2: देखो साहब, अपन को कछु भी बोलो आप, कौन फर्क नहीं पड़त।
1: हाँ, पर दीदी को नाम इज्जत से लेवे पर भारत की नारी की इज्जत बढ़त है, समझे?
0: अच्छा, तो अब आप मुझे शिक्षा देने लगे हैं। अरे तुझे पता नहीं है क्या, रमा मेरी बीबी है और तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन होता है?
1: ऐसो है साहब, रहीमन जी कह गए हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, दूसर को शीतल करे आपऊ शीतल होए।
3: वाह रामू, तू कितना ज्ञानी कितना विज्ञानी है।
1: वो तो बचपन से हूँ दीदी।
3: देखो जी, सीखो सीखो इससे कुछ। एक आप है कि सुबह हुई नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कभी रामू पर तो कभी मुझ पर।
0: क्या चिल्लाना, अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो दिन रात भों भों भों करता रहूं।
3: आप कुछ भी बोलो पर रामू है बहुत होशियार।
0: हाँ, होशियार है तभी तो भुगत रहा हूँ।
3: क्या भुगत रहे हो, अरे क्या भुगत रहे हो, आपके यहाँ तो कोई नौकर मिल ही नहीं रहा था, तभी तो मेरे पापा जी ने इसे यहाँ भेजा। एक तो बेचारा दिन रात काम में जुटा रहता है, फिर भी आप उसे कोसते रहते हो।
2: देखो दीदी, साहब को हम और हमारा काम दो पसंद नहीं है, सो अब हम इतने से जाते हैं।
4: तोरे जाने की खुशी और दिल उदास
0: जो,
4: है।
0: जो, जो। उब लगा रहा है कच्ची पक्की अपनी दीदी को।
1: ऐसी बात नहीं है साहब, अपन कोई चीज कच्ची नहीं बनाते, अपन तो एकदम पक्की बनाते हैं।
0: हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, अब तो बता दो कि मेरा सूट और मेरी टाई कहाँ है। अरे आज ऑफिस में मीटिंग है।
3: वो ऐसा है कि मैंने आपका सूट आज के लिए रामू को दे दिया है। वो आज सरिता के यहाँ किटी पार्टी है ना, और उसमें मुझे गुलाब जामुन बना के ले जाना है, और आपके पास तो समय है नहीं। मैंने सोचा कि रास्ते में से ही 10 किलो गुलाब जामुन खरीद लूंगी और उन्हें ले जाने के लिए रामू को साथ में ले लूंगी। अब रामू हमारे यहाँ का यानी कि आपके ससुराल का नौकर ठहरा, यानी इज्जत का सवाल आ गया ना, किसी से कम न पड़े वो वहाँ पर, इसीलिए मैंने उसे सूट और टाई पहना दिया। क्यों जी, कैसी रही मेरी प्लानिंग?
0: वाह, क्या प्लानिंग है, तुम अपनी प्लानिंग को करो और मेरी इज्जत का फालूदा बनाती रहो।
4: अरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे, एक सूट टाई भी नहीं है मेरे पास।
1: लो साहब, इतनी सी बात को परेशान हो रहे हैं आप? अरे कह दियो कि घर से सूट पहन के निकले रहते, पर रास्ते में ससुरी बिल्ली कन्नी काट गई, तो वापस घर जाकर सूट उतार के आनो पड़ो।
0: अबे अबे, क्या मतलब बिल्ली कन्नी काट गई?
1: अरे का साहब, इतनी भी बात नहीं समझता आप? हमाओ कैबो को मतलब जे हतो कि आप एक गटर के पास से निकल रहे थे कि अचानक आपको पैर फिसल गयो तो सूट गंदा होगा।
3: वाह वाह, क्या दिमाग पाया है तूने रामू।
1: थैंक यू दीदी।
3: सच रामू, अब तो पूरी जिंदगी तू इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना।
0: अच्छा रामू, अरे ये एक मिनट भी यहाँ देखो तो मैं का खून पी जाऊंगा।
1: देखो साहब, अब आप खून पियो चाहे पानी पियो, मैं तो सूट पहन के आता हूँ। और दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ।
3: और हाँ, आप भी सुन लीजिए, शाम को सरिता के घर होते हुए आना, शाम का खाना उसी के घर है।
0: यानी कि बेइज्जती पर बेइज्जती। खैर बेटा दिनेश, अब ससुराल का नौकर पाला है तो सहन तो करना ही पड़ेगा।
5: किधर को आता है, इधर भीख मांगने वाले को अलाउ नहीं है, अंदर जाना मनाई।
0: अरे हट। ए, ए, ए, ए, ए, मैं तुझे भीख मांगने वाला दिखता हूँ?
5: अरे बहिष्कृत करता है, यानी आजकल का भिखारी भी बहिष्कृत करता है। अरे बाबा, किसी के माथे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो भिखारी है या नहीं, अपन उसके कपड़ों से चाल ढाल से पता चलता है कि वो कौन है।
0: अरे वो चौकीदार भैया,
4: जरा अंदर जाकर सरिता मैम साहब के फ्लैट में खबर करो कि रमा

0: के साहब आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, तुम भिखारी के साथ साथ पागल भी हो। अभी पागल खाने फोन करके मैं कहता है कि एक पागल खाने से पागल भाग कर आया इधर को। अरे रामा मेम साहब के साहब, तो सुबह से किसी पार्टी में आए?
0: अरे वो हमारा नौकर है रामू, रमा का पति मैं हूँ मैं।
1: वाह साहब जी, अच्छा मजाक करता है। पन रुको, अपन साहब को बुला के लाता है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। रुकना, बाग मत जाना, समझे? इधर ही रुक।
2: अरे जी आप?
0: हाँ मैं तुम्हारा नौकर।
2: अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना।
0: अंदर क्या हूँ, पहले इस चौकीदार को बताओ कि तुम्हारा पति कौन है, मैं या ये ससुराल का नौकर?
1: अरे साहब, अपुन साहब समझ गया। अच्छा, ससुराल का नौकर, तभी तो वो लाल साहब और आप लोड साहब दिखते हैं। लेकिन मैम साहब, इसमें अपुन का दोष नहीं है। आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड की तरह रखिए ना।
2: दिनेश मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी के कारण हुआ। मैंने रामू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया था।
0: आज तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। एक मामूली से चौकीदार ने मुझे बेइज्जत किया।
2: नहीं दिनेश, ऐसा मत बोलो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको अपमानित करने या करवाने का। जो हुआ वो मेरी नादानी थी। मैं भूल गई थी कि हर आदमी की अपनी हैसियत होती है, एक दर्जा होता है। नौकर नौकर होता है, पति पति होता है। मुझे माफ कर दो दिनेश।
0: नहीं
2: दिनेश, मैं बहुत शर्मिंदा।
0: बिल्कुल नहीं,
2: प्लीज दिनेश,
0: बिल्कुल भी नहीं।
2: प्लीज दिनेश, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज।
0: तुम शर्मिंदा हो?
2: हाँ।
0: हो?
2: हाँ।
0: चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए।
2: इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया?
0: हाँ बिल्कुल।
2: तो चलो, अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं।
0: चलो। एक मिनट बहादुर, जरा ये बता, मैम साहब के साथ ससुराल का नौकर अच्छा लगता है या मैं?
2: दिनेश।

ससुराल का नौकर, अभी आपने संतोष श्रीवास्तव की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे राकेश ढोंडियाल। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है केके ने, संगीत प्रीतम का, बोल सैयद कादरी के।

लीजिए सुनिए मोहम्मद इरफान, अरिजीत और सैम भट्ट को फिल्म मर्डर 2 में सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मिथुन ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए मुस्तफा जैद को फिल्म आवारापन में। सैयद कादरी ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म सुपर 30 में। अजय अतुल ने संगीत दिया है और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश राहत फतेह अली खां और सुजैन टिमालो की आवाज में। फिल्म का नाम है वीर। गुलजार के लिखे गीत की धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता

0: सजगता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा

0: दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है। इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है। उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण

0: निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अर्थ फिल्म के गाने से, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, बोल कैफी आसमी के संगीत कुलदीप सिंह का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आहिस्ता आहिस्ता आप सुनिए इस फिल्म का गीत भूपिंदर की आवाज में। निदा फासली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर और तलत अजीज ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे हैं मखदूम ने।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की। मेरा नाम

राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर

0: आवारा हूँ।
1: राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में।

राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आग कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हो, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

0: अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आईं। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भवरा, सरगम और बावरे ने
1: मुझे

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म आवारा का।

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की 3 फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आ फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आ ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया। लेकिन सबको सिखा गया, शो मस्ट गो ऑन।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उस रोज गाया था उसने एक गीत, प्यार हो मेरा बहार हो मेरा। उसके इस गीत से बहार आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त की धूल भरी आंधी चली और जिंदगी के मन के कुछ मोती टूटकर बिखर गए। जिंदगी उदास गीतों का सिलसिला बन गई।

मुलाकातें होती रहीं, इजहारे मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए, रूठने मनाने का सिलसिला तेज हो गया, नजदीकियां दूरियों में तब्दील होने लगीं, नजरें खफा हो गईं, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई,

दूरियों में तब्दील होने लगी, नजरें खफा हो गईं, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई, गुफ्तगू खामोशी में बदल गई और फिर जिंदगी को उदास रंग रास आ गया।

हुस्न और इश्क का मिलन होता है तो समझ जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं गाती। जिंदगी के थाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं, जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं घिराती हैं, जिंदगी की राहें भटक जाती हैं, कांटों का लंबा सफर बन जाती है जिंदगी। मोहब्बत भरी बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं। जिंदगी मोहब्बत और तकरार से मिलकर बनती है, पर जिंदगी तभी लुभावनी लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी। दो दिल रूठते हैं तो प्यार का मौसम उदास हो जाता है।

जिंदगी की हर कहानी में उसका नाम लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गईं। दुनिया के बहुत सारे रास्तों पर चलकर देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए, वो रास्तों की बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज से जिंदगी की राह में कांटे बिछ गए।

ख्वाहिशों के गांव में एक आशियां बनाया था, मन्नतों के धागे से गूंथी थी प्रेम की माला, मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पनाह पाते थे, पर एक रोज काली घटाएं घिरी, नैनों में नदी तिराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत उन्हीं के एल्बम से, अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स। इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

कि यूं होता तो क्या होता। जगजीत सिंह को आप सुन रहे थे इस गजल में। इसके साथ ही आज का रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

रेशमा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीता भी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

0: फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद पक्षी ने इसे लिखा।
1: वो जब याद आ

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में उखिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा

0: प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है। ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथी हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं। गुलमोहर दो दीवाने शहर में, उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होंगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है। चलचलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। विरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफर में हूं तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी खुशियां आती है तो जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहां यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताजा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथ ही हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है।

थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, जमाने में गुलमोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल, कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में और गुलजार ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल

जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे यह कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहां पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहां पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पढ़ जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि

गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है। और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम जरूर, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहां पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें

उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की फूलों में मिली जूही महक ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतजार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, जरूर मुझे लिखिए।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है। सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनाया गया आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, उमेश शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज कर सके। पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज्यादा से ज्यादा तरोताजा रह पाए, जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था और वहां पर फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहां पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

फिल्म अपने पराये से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहां पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे साधना फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में अगला गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में कवि प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत तीसरी गली फिल्म से हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं अगला गीत दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 9:30 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं स्वर्ण सुंदरी फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज में, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में भागवत फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सरदार सिंह के संगीत।

हम सुन रहे थे परवरिश फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडेकर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे गीत मालिक फिल्म से, शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे समझे।

0: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में बजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: बाजू

कहते हैं प्यारे पम पम पम बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम रिबा रिबा।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से यह गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीत आई मिलन की बेला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आज का यह सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी है मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई, अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा जी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना,
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल, कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं, और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसा महसूस होता है ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
1: आवाज दी बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें

0: किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नव वधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नव विवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता

0: में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है, कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की, तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
1: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन

0: से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा, आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत्ते रे लालची?
0: 200 रुपए नहीं, 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
2: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं? वहां तो गहनों से प्रेम है।
2: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
4: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर।

0: बंगला ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
5: कल मिलने वाले हैं। हाँ,
4: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
5: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
4: शुभकामनाएं
5: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
4: हाँ तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें। सभी सखी और सखा तैयार होकर,
5: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
4: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आंख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद, कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं, नहीं
0: ये
1: नहीं।
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है, और हमें ये समझना चाहिए कि जो

0: हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे देखभाल करते थे लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे। बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी, आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे तो बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी,
0: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ, यानी वीराना सा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तक कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लें।

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं

0: उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते नहीं दूध बंद कर दो इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
0: वहम नहीं होना चाहिए।
1: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है क्योंकि दूध के बिना मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
0: जी। और एक लिखते हैं देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, या गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी न किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो अभी मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आधा कप आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूने और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग न होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकतानुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/2 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

थे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति फिल्म पांचूप में। अब सुनते हैं मुकेश और कंचन के स्वर में धर्मात्मा फिल्म का गीत। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।

अगला गीत राम संपत का संगीतबद्ध किया, रचनाकार हैं समीर। खाकी फिल्म के इस गीत की धुन को आवाज दी है उदित नारायण और

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह करिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे।

सीता और गीता। अब सुनिए इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार को आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरटी बर्मन ने।

सीता और गीता, अभी आपने इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार को सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। लीजिए सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आर डी बर्मन का संगीत बद्ध किया कुदरत फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

अमर अकबर एंथनी। लीजिए अब इस फिल्म का गाना सुनिए, आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने नकाश अजीज और अंतरा मित्रा को आर राजकुमार फिल्म में सुना। संगीतकार किया था प्रीतम ने, बोल लिखे थे मयूर पुरी ने।

ट्रैफिक सिग्नल, ये है नाम फिल्म का और ये है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश भी। आवाज उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल्य का और बोल लिखे हैं खिलेश शर्मा ने।

व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो